जाए लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता काल कला पर पुर रहिया तू सच्चा साहिब सिवत सवाल योजन कीती सो पर पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहिया सोदा रागासा महला पहला एकोंकार सतगुर प्रसाद सोदार तेरा के हा सो कर के हा जित बह सर्व समाल।

गावनतुनो पवनपणी बैसंतर गावा राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चितकुपत दिख जानन लिख लिख तरम बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बेटे देवती आदर नाले गावन तुदनो सित सम गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बेटे देवती आदर नाले गावन तुदनो सित समाधि अंदर गावन तुदनो सद विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वे

न कोय। जे बुट आम ते बुट तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खचम बिसर है ते कम जात, नानक नावे बाज सनात। रा गुजरी महला छोता, हर के जन सत गुरु सत पुरखा, बिनो करो गुरु पासम, कीर किरम सत गुरु सरनाय कर दया नाम परगास। मेर मीत गुरुदेव मोख राम नाम परगास, गुरमत नाम र प्राण सखाय, हर किरत हमरी रह रास रहा। हर जन के वड़ पाग वडेर जन, हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम लय त्रिपिता समल संगत गुण परगास। जन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नाही आए, त्रिग जीव त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिख्या लिखास। धन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग जरी महला पंजवान, काहे रे मन चितवह उदम ज, आहर हर जिय परिया, सैल पतर मह जंत उपाय, ताकार जख्या गय कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे कष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लुक सुत बनिता, कोई ना किसकी तरिया, सिर सिर रजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। ऊड़ ऊड़ वैस कुसत से पछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन छुगावे, मन मह सिमरन करिया। सबन धान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाय, तेरा अंतन पारा वरिया। रागा समहला चोता सो पुरख, एकोंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सिर जनहारम। सब जिया तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक बे

जी तेरे क्या गुण आख बखाना। जोसेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावे तुद जी सह जन जुग मह सुखवासी। समुकत पय जन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फांसी। जन नर पौ जन हर नर पौ त्याया जी तिन का पौ सा भगवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत सलाहन तुद जी परे बेअंत बेअंत सनम। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करा हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु स्मृत शास्त्र जी कर किरे खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम पर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई। तुद आपे पावे सोए वरते जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। असा महला पंचोता तू करता सचार मैडा साई। जो तो पावे सोई तीसी जो तू दह सोई हो पाई रहा। सब तेरी तू सब नीत आया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माह तुझ बिन दूजा कोई ना है। जिया जंत सब तेरा खेल वे जोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जान आया सोए जन जान हर गुण सदही आख वखान। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होई। असा महला पहला तित सुरवरड़ पाई लने वासा। पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं छल हम देखते डूबियले। मन एक न चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना जन तू नाही विसरिया। असा महला पंजवा पाई परापत मनुख देहुरिया। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर कज तेरे किते नकाम मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरंग कै जन्म मृत जात रंग माया कह रहा। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधन जन हर राइया। कहो नानक हम नीचे कर्मा शरण परे की रखो शर्मा। एकोंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह पातशाही दसवीं। कवियो बाच बेंती चौपाई हमारी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा हमारे दुष्ट से पै तुम कहावो। आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बस मोरो परिवारा। सेवक सिखे सब कर तारा मोरा चान ज कर दे करिए। सब पैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ। जो बर छाऊ सु तुम ते पाओ। सेवक सिखे हमारे तरे है चुन चुन सत्रे हमारे मारे है। आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा श्रीय से दुजू करिए हो रच्छा। राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत साहे प्यारे। दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बब तारा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जा छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।
नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कण को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कौन चल असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रज धरत तब दहे अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तू मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही तरहत निरालम जनत वेद भेद अर आलम

भुखते रहा। खड़ग केत मां शरण तिहारी, आप हाथ दल हो उबारी। सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोखते लेहो बुछाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। किले बिक सकल दहे को हरता, दुष्ट दोखने को छय करता। श्रेयस दुज जब पाए नियाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन